0: आप ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। एशिया, अमेरिका, यूरोप और दीगर खित्तों के दिफाई हुक्काम ने कबल अज़ीं रवा माह अमरीका और चीन के सरबराही इजलास के बाद सिंगापुर में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया है। शंग्रीला डायलॉग जुमे को शुरू हुआ। मंदूबीन में जापानी वजीर दिफा कोइज़ुमी शिनजीरो और अमरीकी वजीर दिफा पीट हेगसेथ शामिल हैं। ईरान की कशीदा सूरत हाल के एशिया पर असरात से मुतालिक बातचीत का इम्कान है। दीगर मौजूआत में मुमकिन तौर पर ताइवान और बुहरा जनूबी चीन से मुतालिका मसाइल जैसे इलाकाई सलामती के चैलेंजेस शामिल होंगे। दो तरफा और कसीर फरीकी बातचीत बतवक्को है। हेगसेथ हफ्ते को तकरीर करने वाले हैं। उनके पैगाम और इस पर एशियाई ममालिक के रद्द अमल पर तवज्जो मरकूज होगी। हिंद बहरुल काहिल में जापान के किरदार के हवाले से भी दिलचस्पी बढ़ रही है। जापानी वजीर आज़म ताकाइची सानाए ने कबल अज़ीं रवा माह खारजा पॉलिसी के हवाले से अपनी तकरीर में आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल का एक तजदीद शुदा विजन पेश किया था। इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने अपने मुल्क की फ़ौज को गजा की पट्टी पर कंट्रोल बढ़ाने की हिदायत दी है ताकि इस्लामी ग्रुप हमास पर दबाव बढ़ाया जा सके। नेतन्याहू ने जुमेरात को कहा कि अब हमारे पास 60% कंट्रोल है और उनकी हिदायत है कि इसे बढ़ाकर 70% कर दिया जाए। गजा में इसराइल और हमास के दरमियान अमरीकी ज़ेर क़यादत अमन मनसूबे पर मबनी जंगबंदी गुज़िश्ता साल अक्टूबर में अमल में आई थी। ताहम इस पट्टी के सेहत हुकाम ने जुमेरात को बताया कि जंगबंदी के नफाज के बाद से अब तक 922 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा में वक्फे वक्फे से हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। अमन मनसूबे में इसराइली फ़ौजियों का इनखला और हमास को गैर मुसल्लह करना शामिल है। ताहम अभी तक इस मंसूबे पर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई है। मशरिक़ वुस्ता में तूल पकड़ते तनाज़े का असर भारत की दो बड़ी ज़रई मसनूआत मसाला जात और आम की बरामदात पर पड़ रहा है। मसालों से तेल बनाने वाली जनूबी रियासत केराला में एक कंपनी खलीजी ममालिक के साथ तजारत करती रही है। आबनाए हुरमुस की बंदिश के बाद इसे अपनी तरसील के लिए दूसरे रास्ते तलाश करने पर मजबूर होना पड़ा। कंपनी का कहना है कि इसे नकलोहमल के ज़्यादा अखराजात और बहरी इंश्योरेंस प्रीमियम में इजाफे का सामना है। आम की सनत पैदावारी हजम के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी सनत है, ये भी मुतासर हुई है। जुनूबी रियासत कर्नाटक के कुछ किसान पहले अपनी पैदावार का 40% मशरिक़ वुस्ता को बरामद करते थे, लेकिन तनाज़े के आगाज़ के बाद से इस खित्ते की तमाम बरामदात रुक गई हैं। कहीं और जाने की जगह ना होने के बायस उनके आम कम कीमतों पर अंदरून मुल्क मार्केटों की तरफ बड़ी मकदार में जा रहे हैं। वो अपनी मामूल की कीमत के 1/4 से भी कम पर फरोख्त हो रहे हैं, जिसके नतीजे में किसानों को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है।
1: اور سامعین، اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور دیگر معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیے۔

0: 金閣寺
1: और जाना है
0: 行きます
1: मैं किंकाकुजी जाऊंगा ये जापानी तो होगी किंकाकुजी नी इकिमास अब आप बताएं मैं किंकाकुजी जाना चाहता हूं को क्या कहेंगे
2: किंकाकुजी नी इकिताई देस किंकाकुजी नी इकिताई देस
1: अगर आप किसी के लिए तोहफे के तौर पर गर्मियों का हल्का किमोनो युकाता खरीदना चाहते हैं तो ये किस तरह कहेंगे युकाता का दुरुस्त तलफ्फुज़ है
0: युकाता युकाता
1: और खरीदने को कहते हैं
0: काइमास काइमास
1: तो सामीन कोशिश करें
2: युकाता गा काइताई देस युकाता गा काइताई देस
3: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा
1: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर आज का जुमला मियां ने ताम से उस वक्त कहा था जब ताम का चेहरा सुर्ख हो गया था इसे इसी तरह याद कर लें
4: दाइजोबु
1: यानी क्या तुम ठीक हो मुखातिब के बारे में फिक्रमंदी का इजहार है शाइस्ता अंदाज में से कहेंगे दाइजोबु दिसका अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप ठीक हैं और आप कहना चाहें मैं ठीक हूँ तो यूं कहेंगे
0: दाइजोबु दिस दाइजोबु दिस
3: अब ये जुमला मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुने
5: दाइजोबु
6: दाइजोबु
7: दाइजोबु
3: सामीन अब आपकी से दोहराने की बारी है
0: दाइजोबु
1: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए उन हिस्सों पर खुसूसी ध्यान दें जिनमें ताम अपने आइंदा के इरादों का इजहार करती है
8: निहोन नी वा नारेमाश्ता का
9: हाय
8: निहोन दे दोन्ना कोतो गा शिताई देसु का
9: 雪が見たいです北海道に行きたいです
8: 北海道いいね
9: あと友達に会いたいです
8: おや
4: 大丈夫顔が赤いよ
8: ハルさんの知恵袋
3: अब हारूसान की जंबील का कॉर्नर आज के मकालमे का मकाम हारूसान हाउस की बैठक है इस मुनासबत से जापानी घरों और तर्ज जिंदगी के बारे में कुछ मालूमात पेश हैं
1: कमरों की तादाद और उनकी तरतीब के लिहाज से तो हर घर मुख्तलिफ होता है लेकिन जापानी घरों में बुनियादी तौर पर दो तरह के कमरे होते हैं जापानी तर्ज के कमरे और मगरबी तर्ज के कमरे मगरबी तर्ज के कमरों में लकड़ी का फर्श या कालीन बिछा फर्श होता है इनमें आमतौर पर मेज कुर्सियां वगैरह इस्तेमाल होती हैं जबकि जापानी तर्ज के कमरों में सरकंडों की बनी हुई मोटी चटाई ततामी का फर्श होता है और कमरे में नीची मेज होती है अहले खाना मेज के गिर्द फर्श पर जाबुतोन कहलाने वाले कुशन रखकर बैठते हैं
3: अनवर साहब जापानी तर्ज के कमरों में रात को सोने के लिए ततामी पर बराह रास्त बिस्तर बिछाए जाते हैं जिन्हें फुतोन कहा जाता है ऐसा ही है ना
1: जी हाँ लेकिन आजकल अपार्टमेंट्स आम होने और लोगों का तर्ज जिंदगी तब्दील होने की वजह से अब जापानी घरों में मगरबी तर्ज के कमरे आम हैं तहम कई घरों में दोनों तर्ज के कमरे होते हैं इनमें कम से कम एक ततामी वाला यानी जापानी तर्ज का कमरा होता है
3: ततामी वाले कमरे में रहने का तसव्वुर भी काफी अच्छा मालूम होता है
1: जी बिल्कुल वैसे मगरबी या जापानी तर्ज से कतई नजर जापान में घरों में दाखिल होते ही जूते उतार दिए जाते हैं घरों के अंदर अक्सर स्लीपर इस्तेमाल होते हैं लेकिन जापानी तर्ज के कमरे में दाखिल होते वक्त वो भी उतार दिए जाते हैं सरकंडों से बनी ततामी पर नंगे पैर चलना बहुत आरामदेह महसूस होता है सरकंडों की खुशबू भी सुकून बख्श होती है

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 29 मई शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला खावानो से सुने समाचार। जापान के ताज़ा जनगणना आंकड़ों से पता चलता है कि देश की जनसंख्या घटकर करीब 12.3 करोड़ रह गई है, जो 5 वर्षों में अब तक की सर्वाधिक गिरावट है। आंतरिक मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को 2025 राष्ट्रीय जनगणना के प्रारंभिक आंकड़े जारी किए। जापान 1920 से हर 5 साल के अंतराल पर ये सर्वेक्षण करता आया है। ताज़ा सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले वर्ष 1 अक्टूबर तक देश की जनसंख्या 12,30,49,524 थी। यह आंकड़ा 2020 के पिछले सर्वेक्षण से 30,96,575 कम है, जो 2.5% की गिरावट है। जनसंख्या में 2015 के बाद से लगातार तीसरी बार गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि 2015 में जनसंख्या में पहली बार गिरावट आई थी। मंत्रालय की सितंबर तक अंतिम आंकड़े जारी करने की योजना है। सूत्रों के अनुसार जापान सरकार ने आपदा तैयारी से जुड़ी एक नई मूल योजना का मसौदा तैयार किया है, जिसमें एक 10 वर्षीय कार्यक्रम भी शामिल है, जिसका उद्देश्य टोक्यो के ठीक नीचे आने वाले महाभूकंप से होने वाली मौतों की संख्या को आधे से भी कम करना है। पिछले वर्ष दिसंबर में एक सरकारी समिति ने भूकंप से होने वाले जानमाल के नुकसान के अनुमानों की समीक्षा की थी। ताज़ा आंकड़ों से पता चलता है कि सबसे ख़राब स्थिति में भूकंप से 18,000 लोगों की मौत हो सकती है और 4,02,000 इमारतें ध्वस्त या जलकर राख हो सकती हैं। इसके जवाब में सरकार ने आपदा न्यूनीकरण लक्ष्य और आपदा तैयारी उपाय निर्धारित करने वाली अपनी मूल योजना में संशोधन किया है। इस मसौदा योजना में अग्नि दुर्घटना रोकथाम प्रयासों को बढ़ावा दिया गया है। ऐसी दुर्घटनाओं को लगभग 70% मौतों और इमारतों के क्षतिग्रस्त होने का कारण माना जाता है। इनमें से एक उपाय ऐसे सर्किट ब्रेकर लगाना है जो तेज झटका भांपते ही बिजली की आपूर्ति काट देते हैं। इस मसौदे में 10 प्रीफेक्चरों के निर्दिष्ट क्षेत्रों की अधिकांश इमारतों में सर्किट ब्रेकर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन क्षेत्रों में टोक्यो और उसके आसपास के खानागावा, साइतामा और चिबा प्रीफेक्चरों की सभी नगरपालिकाएं शामिल हैं। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने बृहस्पतिवार को टोक्यो में वार्ता की। दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक सामरिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने पर सहमत हुए। बैठक की शुरुआत में ताकाइची ने कहा कि स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत से संबद्ध नवीनतम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जापान और फिलीपींस का घनिष्ठ सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फिलीपींस जापान का एक सबसे करीबी और समान विचारधारा वाला साझेदार है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सुरक्षा और अर्थव्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। वहीं मार्कोस ने कहा, आज की हमारी बैठक हमारे संबंधों को नई संभावनाओं की ओर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। सुरक्षा के क्षेत्र में जापान और फिलीपींस जी सोमिया नामक समझौते पर औपचारिक वार्ता शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत दोनों देश गोपनीय सैन्य जानकारी तुरंत प्राप्त करते हुए उसे साझा कर पाएंगे। जापान सरकार का कहना है कि यूक्रेनी सशस्त्र बलों की मदद करने वाले नाटो अभियान में जापानी आत्मरक्षा बल के 4 कर्मी भेजे जाएंगे। यूक्रेन को सैन्य उपकरण और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के काम में समन्वय के लिए 2024 में जर्मनी में नाटो सुरक्षा सहायता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नाटो सदस्य देशों के साथ मिलकर इन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की कि 4 कर्मियों को जर्मनी भेजा जाएगा। मंत्रालय के अनुसार वे जून से कमान में योजना
और समन्वय संबंधी कार्यों में भाग लेंगे।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: इस महीने अमेरिका चीन शिखर वार्ता के बाद एशिया, अमेरिका, यूरोप और अन्य क्षेत्रों के रक्षा अधिकारी सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रवार से आरंभ इस सम्मेलन में जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो और अमरीकी रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ भी भाग ले रहे हैं। चर्चा का एक मुख्य विषय ईरान की तनावपूर्ण स्थिति का एशिया पर पड़ने वाला प्रभाव हो सकता है। अन्य विषयों में ताइवान और दक्षिण चीन सागर से संबंधित क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां हो सकती हैं। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वार्ताएं होने की भी उम्मीद है। हेक्सेथ शनिवार को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उनके संदेश और एशियाई देशों की उस पर प्रतिक्रिया पर सबकी नजर टिकी होगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के अनुसार इस्लामी गुट हमास पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने सेना को गाजा पट्टी पर नियंत्रण बढ़ाने का निर्देश दिया है। नेतन्याहू ने बृहस्पतिवार को कहा कि अब हमारा 60% पर नियंत्रण है। नेतन्याहू का ताजा निर्देश इसे बढ़ाकर 70% करना है। अमेरिका की अगुवाई में शांति योजना के तहत पिछले साल अक्टूबर में इसराइल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम लागू हुआ था, लेकिन गाजा पट्टी के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि संघर्ष विराम शुरू होने के बाद से 922 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना गाजा में रुक रुक कर हमले करती आई है। शांति योजना में इजरायली सैनिकों की गाजा से वापसी और हमास का निरस्त्रीकरण शामिल है, लेकिन इस योजना पर अब तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। ईरान संघर्ष के लंबा खिंचने से भारत के दो प्रमुख कृषि उत्पादों, मसालों और आम के निर्यात पर बुरा असर देखा जा रहा है। तिलहन से तेल निकालने वाली केरल की एक कंपनी खाड़ी देशों के साथ व्यापार करती रही है। हॉर्मूज जल डमरू मध्य के बंद होने के बाद से उसे अपना माल भेजने के लिए अन्य मार्ग तलाशने पड़े हैं। कंपनी के अनुसार उसे परिवहन लागत में वृद्धि और समुद्री बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ रहा है। उत्पादन मात्रा के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा आम उद्योग भी इससे अछूता नहीं रहा है। कर्नाटक के कुछ किसान पहले आम की फसल का 40% पश्चिम एशिया को निर्यात करते थे, लेकिन संघर्ष शुरू होने के बाद से इस क्षेत्र को होने वाला समस्त निर्यात बंद हो गया है। बाहर न जाने के कारण उनके आम अब घरेलू बाजार में सस्ते दामों पर बिक रहे हैं। अब दाम सामान्य कीमत का 1/4 से भी कम है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।